इसका एफ एम कवा ओ लंग पंग तन कुछ अवंग प्रखर मगो सब जिसे का के रदो के कबया तू का खई से पंग कोई खई कवा रदो के नुमरु या होने तेन सी व पे नेखा एफ एम मन तो कोई अवंग ओ लंग कोई सगो जिसे का के आ ओ लंग कोंगा के कबया तू का खई से पंग कोई खई कवा रदो के नुमरु या होने तेन सी व पे नेखा एफ एम मन तो कोई अवंग ओ लंग अंकुए सागु जी से का के ओलांग जी चा कोना के कबाया तुआ खाई से पंगो गुसे दे मुतने गुचु औंगो ओला गुई सा अंची म काया के प्रखमंगो कोना अले क्वा ओलांगो एम तुतु के आ मो काया ओलांग जी चा हंगुई सा कवि सी गा ख कों का के रादु गुसे दे मुतने चोंगो ओलांगो ता सा ये मसे दे क्वा खन गुसु पा के अखते मनिते मोंग कबा नबा ओले नुइ मजि तबा हंगुई सा अंची म का के आ ओलांगो कोना के ओलम तो छोंगो के मांगो मसो तेंदु तो मांगो ओलांग।